गहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.radiodharani.org मार्फत संसार भर के प्रसारण भइरहेको बिहान 6:45 बजे को खबर में मेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य खबर

0: तीन इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: 的帮你耶 Extreme Energy Drink
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: एमआई मैजू कलर्स लाभा एमटेक टेक्नो आईटेल ब्रांड का मोबाइल घड़ी साउंड सिस्टम डिसोम पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लीएर नया मोबाइल साटिन्छ।
1: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंगेसी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 98140063130 र 98131803007।

0: सा मेगाहर्ट्ज।
1: सुन गोल्ड लेदर एंड मेरा गिफ्ट दू भनेको ब्रांडेड मोबाइल क्या बन त्रिमूर्ति छ नि छ मोबाइलटा घड़ी अनि घर में रेडियो र आमा को मोबाइल भी बनाउँछ
0: त्रिमूर्ति छ नि छ नि
1: आफूलाई समस्या परिरहेको छ मजा गरेर बस्छ भने भन्नु छिरो
0: मजाक होइन भने तेरो सबै समस्याको समाधान गर्ने ठाउँ त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस पो भनेको त मैले ओरिजिनल तथा ब्रांडेड मोबाइल सस्तो मूल्यमा छानी छानी किन्नलाई त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस तिर
2: हामी कहाँ सैमसंग ओप्पो भिवो सीजी इन्फिक्स एमआई मैजू कलर्स लाभा एमटेक टिक्नो आईटेल ब्रांड का मोबाइल घड़ी साउंड सिस्टम डीफोन पंखा तथा संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान पाइन का साथ ही पुरानो मोबाइल लीएर नया मोबाइल साटि
3: त्रिमूर्ति मोबाइल हाउस धादिंग सी मिलन टोल लेकाली टिकट काउंटर संगे प्रोपाइटर ईश्वर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9841063130 र 9813183307।

0: रुक रही ना रुक हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: नादिंग प्रोपाइटर नवीन कुमार श्रेष्ठ।
1: फोन नंबर 0935367 मोबाइल नंबर 9841 26 33 83।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: को हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।